रहाउ। सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरति बार मग हर उठ आया, मरति बार मग हर उठ।

0: जब लग रस तब लग नहीं नेह रहाउ। साहन सत करै जी अपने सो रमैये कौ मिलै ना सो रमैये कौ मिलै ना सुपने।
1: हुण इत्थे रमैये पाठ आया अखरां वल ध्यान देना रारा मम्मा ये नूं लां लगी हुई इहदा उच्चारण जिवें कीता है भाई साहिब जी ने शुद्ध है सो रमैये चेते रखियो रमैये पाठ उच्चारण करो।
0: तन मन धन ग्रह सौप शरीर सोई सुहागन कह कबीर गौड़ी कबीर जी बिख्या ब्यापया।

गौड़ी कबीर जी जे कुल पूत ना ज्ञान बिचारी विधवा कस ना भई महतारी जे नर राम भगत नह साधी जनमत कस ना मुओ अपराधी जनमत कस ना मुओ अपराधी रहाओ मोच

मन का सुभाव, मन का सुभाव मन है व्यापी, मन है मार कवन सिद्ध थापी, कवन सो मन जो मन मार, मन कहो मार कहो किस तार रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत न होई, कहो कबीर जो जाने पे, मन मद सूदन त्रिभवन दे गौड़ी कबीर जी। ओए जो दिस है अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे, कहो रे पंडित अंबर का स्यो लागा, बूझे बूझन हार सुभागा रहाओ। सूरज चंद करह उजियारा, सब मह पसरिया ब्रह्म।

अष्टपदी कबीर जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख मांगत दुख आगै आवै, सो सुख हमहो ना मांगिया पावै। दिखिया अजहो सुरत सुख आसा, कैसे होई है राजा राम निवासा रहाओ। इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमहो साच कर जाना। सनकादक नारद मुन सेखा, तिन भी तन मह मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोज हो पाई, तन छूटे मन कहा समाई।

माया तपत भुजया अंगियार मन संतोख नाम आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जात पेखो तत अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूरब लिखत मिलिया मेरे भाई जिस कृपा करे तिस पूरन सार।

0: सूतक परज बिगोई, कहो रे पंडिया कौन पविता, ऐसा ज्ञान जपहो।
1: बिहारी ना बोलना पविता।
0: कहो रे पंडिया कौन पविता, ऐसा ज्ञान जपहो मेरे मीता। रहाओ नैन हो सूतक बैन हो सूतक, सूतक श्रवनी होई, उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परे रसोई। फासन की बिद सब को जाने, छूटन की इक कोई, कह कबीर राम हृदय विचारे, सूतक तिन्ह न होई। गौड़ी

जह कछ आहा तहा किश नाही पंच तत् तह नाही इड़ा पिंगुला सुखमन बंदे ए आव गन कत जाही तागा तूटा गगन बिनस गया तेरा बोलत कहा समाई एह संसा मोह कौ आन दिन व्यापै एह संसा मोह कौ आन दिन व्यापै मोह कौ को ना कह समझाई रहाओ जह प्रभंड पिंड तह नाही रचन हार तह नाही जोड़न हारो सदा अतीता एह कही है किस माही जोड़ी जुड़े ना तोड़ी तूटे जाब लघो।

वेद ना वेद ने रचया सो होए कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मजार सेवक सो सेवा भले जह घट बसै मुरार गौड़ी।

उपजै सो बिन सह दुख कर रोवै बलाए जह की उपजी तह रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारै कामनी लोचन भरी ले उसासा लोचन भरी ले उसासा उर ना भिजै पग ना खिसै।

चरण मन लागो सारिंग धर सो मिले जो बड भागो रहाओ बिंदरा बन मन हरन मनोहर बिंदरा बन मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे जाका ठाकुर तुही सारिंग धर मोहे कबीरा नाऊ रे गौड़ी पूर्वी बारवी विपल बस्तर केते है पहरे क्या बन मदे बासा कहा भया नर देवा धोखे क्या जल बोरियो क्याता जियरे जाहेगा मैं जाना अभिगत समझ याना जात जात देखो बहुर ना देखो संग माया लपटाना रहाओ ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेसी एहो जग सगलो धंदा कह कबीर इक राम नाम बिन या जात

बुद्ध हर कह कबीर बुद्ध हर लई मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी खट नेम कर कोठड़ी बांधी बस्त अनूप बीच पाई।

0: चरण समावे
1: लह,
0: तो अल्लह लह लहे चरण समावे
1: लह,
0: तो अल्लह लह लहे चरण समावे
1: लह लह, ते सहरी जी में पहला उच्चारण कीती है भी दह, ते इनु अल्लह लह लह चरण

कूप भरियो जैसे दादरा कश देस बदेस न बूझ कूप भरियो जैसे दादरा कछ देस बदेस न बूझ ऐसे मेरा मन बिखिया बेमोहया कछ आरा पार न सूझ सगल भवन के नायका एक शिन दर्श दिखाए जी रहाओ मलन भई मत माधवा तेरी गत लखी ना जाए करहो कृपा भ्रम चूकई मैं सुमत देह समझाए जोगी सर पाव है नहीं तो गुण

संगत ध्यान दियो। जरूरी बेनती दास कर रहा है, हुण गौड़ी राग संपूर्ण हो चुकिया है, आसा राग आरंभ हो रहा है। आसा राग दे आरंभ दे विच सोदर गुरु महाराज ने उच्चारण किया है। इस तो पहला जपजी साहिब तो बाद सोदर भी लिखिया होया है, जो आप जी ने पढ़िया भी है। फिर उस तो इलावा जपजी साहिब जी की सहवीं पौड़ी विच सोदर का जिक्र आया है। कहण तो भाव तीन वार सोदर संपूर्ण बाणी विच लिखिया मिलता है। इहदे अखरां विच भी मात्रा दे विच भी काफ़ी अंतर भी हैं। ये क्यों? जदों आपां इहदे बारे विचार करते हाँ, ये जिहड़े तीन सोदर गुरबाणी विच लिखे गए हैं, इन्हां दे उचारण का समा ते स्थान वखरो वखरा सी। इतिहासिक दृष्टिकोण तो जदों आपां विचार करांगे तो स्पष्ट हुंदा है, जिहड़ा आपां रहिरा साहिब जी दे पाठ तो पहला आरंभ दे विच सोदर पढ़ते हाँ, वह सोदर धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने जदों सुल्तानपुर साहिब जी के अंदर रहिंदिया होया बेई नदी विच इशनान करन दे समय अंतर ध्यान होके अकाल पुरख वाहिगुरु के सचखंड गए, उथे अकाल पुरख वाहिगुरु के सनमुख सचखंड विच उचारण किया से, जो इतिहासक पक्ष है ध्यान दे नाल सुनना। ये सोदर जिहड़ा हुण आरंभ हो रहा है, जदों हजूर सचखंड तो वापस आए, हजूर दे वड्डे भैण जी बेबे नानकी जी उन्होंने बेनती की, परमेश्वर का स्वरूप मेरे भ्राता जी तीन दिन किथे रहे? हजूर ने आखिया, मैं उस प्यारे निरंकार दे घर दे विच गया सी। सचखंड वसा निरंकार। माता जी बेबे जी हैरान होए, कहण लगे फिर उत्थे की वेखिया? तां हजूर ने फिर यह सोदर उचारण किया जिहड़ा हुण आरंभ होना है। यह संखेप जी बेनती दास कर रहा है, क्योंकि आम जिहड़े स्रोते ने जां संगत दे मैंबर साहबान हुंदे ने, हर माई भाई नूं शंका हुंदी तीन वारी क्यों लिखिया गया। फिर इहदे विच लगां दे अखरां दे भेद भी हन, इह देश काल वखरा होण करके इह अंतर होने भी कुदरती सन। पहला सोदर सचखंड विच अकाल पुरख दे सनमुख उचारण किया, दूजा बेबे नानकी जी दे परसाएं उचारण किया गया, तीजा सोदर जो जपजी साहिब जी दे सताईवीं पौड़ी है उन्हों भी सोदर दी पौड़ी आपां कहिंदे आ, उह सिद्धां दे परसाएं उचारण किया गया। दूजा पक्ष ये भी है गुरसिखां दे परसाएं,
ਕਿਉਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸੋਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਰੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੀਏ। ਲਾਉਣ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ।

0: तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर
1: पढ़े यही पार का
0: गावन तुदनो पंडित पढ़े रखी सुर जो

ज्ञान रतन मन वसै आए नदर करे ता सतगुर मिले प्रणवत नानक भवजल तरै आसा महला पहला पंच पदे दुध बिन तेन पंख बिन पंखी जल बिन उत भुज काम नाही क्या सुल्तान सलाम विहूणा अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसर है दुख बहुता लागै दुख लागै तू विसर नाही रहाओ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पवन ना वाजै चरनी चलै पजूता आगै बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग पुए चोखी सिंचत भाओ करेही सबना फल लागै नाम एको बिन कर्मा कैसे लेही जेते जीव तेते सब तेरे बिन सेवा फल किसै नाही दुख सुख भाणा तेरा हुवै बिन नावै जियो रहै नाही मत विच मरण जीवन होर कैसा जा जीवा ता जुगत नाही कह नानक जीवाले जिया जह भावै तह राख तुही आसा महला पहला काया ब्रह्मा मन है धोती ज्ञान जनेऊ ध्यान कुस पाती हर नामा जस जाचाओ नाओ गुर प्रसादी ब्रह्म समाओ पांडे

0: गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्म राव
1: नावै कर्ण
0: गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्म राव सच्चा नावण तांथिय जा अहनिस लागै पाओ एक लोकी होर छमछरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बखसीस का कबहू निखुटस नाहे
1: निखुटस नाहे दुलेंकड़ बोलो पूरा
0: नानक पिंड बखसीस का कबहू निखुटस नाहे
1: जिहड़ा पहला भी पाठ आया एक लोकी होर शमशरी ए शमशरी पाठ ही उचारण करना है वैसे उचारण शुद्ध किया गया सी पर थोड़ा जिहा भी जानकारी है तो शमशरी पाठ ही ठीक है
0: आसा महल आसा घर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवत्या दर्शन कहताई देवत्या दर्शन कहताई दुख भूख तीरथ किए जोगी जति जुगत मह रहते।

जाकै घर सब किछ है पाई, नौ निद भरे भंडार, तिसकी कीमत ना पवै पाई, ऊंचा अगम अपार। जीव जंत प्रतिपाल दा पाई, नित नित करदा सार।

मेरा सतगुरु सो थान राम राजे विसर नाहीं दातार विसर नाहीं दातार।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै भंग गुर प्रसाद जप।

निरंजन सोए, जिन सेवया तिन पाया मान, नानक गावियै गुणी निदान, गावियै सुनियै मन रखियै भाव, दुख पर हर सुख घर लै जाय, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुर

असंख जाप असंख पाव असंख पूजा असंख ताप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल भख खाहे

असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव पुर माए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ बिन नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हथ पैर तन देह पानी धोतै उत्तर सो खेह मूत पलीति कपड़ होए दे साबून लइए ओह धोए भरिया मत।

गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नर खीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीरथ नाले गावह जोध महाबाल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुद नो गावह जो तुद भावन रते तेरे भगतर सा

जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आख कर्म। किते पवन पानी वै संतर, किते कान महेश। किते बरमे घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मीर, किते किते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश। केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद। केतिया खानी केतिया बाणी, केते पात नरेंद। केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। सर्म

करहै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर।

पात साहि दसवी छपै छंद त्वै प्रसाद चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह चक्कर चिहन

ताहे सर्वमान सर्वतर मान सदैव मान ताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव ना जान ही जेह वेद और कत।

चक्कर बकर फिरा चतर चाक मान ही पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सभै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्ब विश्व रचयो स्वयं भव गड़न भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो भरम रहत अभूत अलख अभेस अंग राग नारंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्ब भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रतपार सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब ते अनपेख सर्ब शास्त्र ना जान ही जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नीत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आवही बहु चित मद भार छंद त्वै प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग

है पवित्र है। पृथ्वी स अदिश अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आ छिज देश के आ भिज भेसै के आ गंज करम के आ भंज भरम के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत वरण के विभूत करण के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूप के अनुभव अनुपय के आदि अदेव है के आप अपेव है के चित्रं विहीन के एक अधीन के रोजी रजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अफवुल गुनाह है के साहान साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वतर मान्या के सर्वतर दान्या के सर्वतर गौना के सर्वतर भौना के सर्वतर देसा के सर्वतर भेसा के सर्वतर राजा के सर्वतर साजा के सर्वतर दीना के सर्वतर लीना के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देसा के सर्वतर पेसा के सर्वतर काला के सर्वतर पाला के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजय के सर्वतर राजय के सर्वतर सोखय के सर्वतर पोखय के सर्वतर तराणय के सर्वतर प्राणय के सर्वतर देसय के सर्वतर पेसय के सर्वतर मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वतर जाप्याय के सर्वतर थाप्याय के सर्वतर भान्याय के सर्वतर मान्याय के सर्वतर इंद्राय के सर्वतर चंद्राय के सर्वं कलिमय के परमं फिहिमय के आकल अलामय के साहिब कलामय के हुसनुल वजू है तमामुल रुजू है हमेशुल सलामय सलीखत मुदामय गनीमुल सिकस्तय गरीबुल परस्तय बिलंदुल मकानय जमीनुल जमानय तमीजुल तमामय रुजूअल निदानय हरीफुल अजीमै रजायक यकीनै अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अभंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुकत स्वरूप हैं त्रिमुकत विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अभेदी अनूप हैं समस्तो पराज हैं सदा सर्व साज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओं आद रूपे अनाद स्वरूपै अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागै त्रिभुगत स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं के नरकं परनास हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुकत प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुगत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं निरुकत सदा हैं विभुगत प्रभा हैं अनुकत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं चाचरी छंद अभंग हैं अनंग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपर्म हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अभूत हैं अदूत हैं अनास हैं उदास हैं अतंध हैं अबंध हैं अभगत हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलेख हैं अदेख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटाह हैं अगाह हैं असंभ हैं अगंभ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद त्व प्रसाद
सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वय प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपूते परमाथं परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रै न पुत्रै न सत्रै न मित्रै ना ताता है ना माता है ना जाता है ना पाता है निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज कर हीम है के रोजी देहांद है के राज कर हिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकान है हिरासुल फिकान है कलंकं परनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनास है बेहस्तुल निवास है के सर्बुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मद भार छंद त्वय प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अनछिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहो एकै सदाहो ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आजिज ना बात

आन ब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वै प्रसाद करुणालय है अर कालय है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ब उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जानिया है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्या है सर्व नास्या है करुणाकर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पार ते पार है करुणाकर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी धृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है बेसवंग पर है करुणालय है नृप नायक है सर्व पायक है भाव भंजन है अर गंजन है रिप तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कार है हरता हार है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग पर्यात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं परनासे सुतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सत्रं परनासी करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बिपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चत्तर चक्रवर्ती चत्तर चक्र भुगते स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बिपूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बिपूते

काल पाए कार बिसन परकासा, सकल काल का किया तमासा। जवन काल जोगी सेव कियो, बेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को साव गुण सुख दियो, सतरन को पालमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।

पट पट की जाना जब उदकर्ख करा कर तारा। प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कबहू तुम मैं मिलत देह धार सबहू जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै। आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निरिबकार निरलंब आदि अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा। जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत।

बैठा कहूं सिमट भयो शंकर एकाठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार असिखे संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रान काता। जे अस तुझ तव सरणी परे तिन के दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है।

अस गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सिति मन।

सुन मन मेरिया। एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया ता मोहनी तिनै कीती। जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विटहो, जिन मोह मीठा लाया। कहै नानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले। साथ तेरै चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइयै, ऐसा कम मूले ना कीचै। जित अंत पछोताइयै सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरै नाले। कहै नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले।

हर हर त्याया। कर्मी सहज ना उपजै विन सहजै, सहसा ना जाए नह जाए सहसा कितै संजम। रहे कर्म कमाए सहसै जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए। मन धोवहो शब्द लागहो, हर स्यो रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एह सहसा एव जाए। जियहो मैले बहरहु निर्मल, बहरहु निर्मल जियहो ता मैले। तिनि जन्म जुवै हारिया, एह तिसना वड्डा रोग लगा। मरण मनहु बिसारिया,

हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया। गुर

क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया, जिन हार तेरा रचन रचिया, सो हार मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूरब लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यो चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो हो कोई, हर बिन अवर ना देखो हो कोई, नदरी हर निहालिया, एहो विस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सत गुर मिलिया दिब दृष्ट होई, ए श्रवण हो मेरे हो।

सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।

सब कुन भी आपको पर कुन भी न कोए तर तरज तुलिए निविशु गोरा होए अपराधी दुना नवे जो हंता मृगा आखे शीश नवय कथिए जर देख सुद जाय महला पे।

चक्कर चिन्ह अर बर्ण जात अर पात नहिं जे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कहिच कोट इंद्र इंद्राण साही साहान गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत मूक उचर शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाय अंध लख बदरो सुने जाओ काल कृपा कराय हे सतनाम श्री वाहे गुरु जी सलोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म दीन दयाल गोपाल सुख संपै बहु भोग रस नानक सादर वाल बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म दीन दयाल गोपाल सुख संपै बहु भोग रस नानक सादर वाल पौड़ी

सुनते पुनीत कहते पवित बिनबंत नानक गुर चारण लागे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की।

सगल गुणा के दाते स्वामी, बिनाओ सुनहो एक दीना, देहो दरस नानक बलिहारी, जियाड़ा बाल बाल कीना, आस प्यासी पिर कैताई, ज्यो चात्रिक बूंदेरे, कहो नानक जियाड़ा बलिहारी, देहो दरस प्रभ मेरे, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाम दी, नूर अरसहो कुरसहो।

चक्कर चिहन अर बर्न जात अर पात नहिं जे है रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के है अचल मूर्त अनभव प्रकाश अमतोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साह सहान गणिजय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वन तृण कहत तो सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत

Vai, guru. गुरु की संगत, थोड़ी एकाग्रता बख्शो। गल्लां तो आपां संकोच करिए, आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी हजूरी विच बैठे हाँ, आपां नूं समां विचार लेना चाहिए है। कृपा करके चुप दा दान बख्शो।

सतगुर पुरख मलाया बलराम जियो, निरपौ भय मन होए हो मैल गवाया बलराम जियो, निर्मल भौ पाया हर गुण गाया, हर वेखे राम हदूरे, हर आत्म राम पसारिया स्वामी, सर्व रहया हर पूरे, अंतर बाहर हर प्रभ इको, मिल हर जन मंगल गाए, जन नानक दूजी लाभ चलाई, अनहद शब्द बजाए, जन नानक दूजी लाभ चलाई, अनहद शब्द बजाए।

इतने ही हाजिर प्रवान कर लीजिए। होइया भुला चुका देखे मां बख्शन सासन बख्शन हार हो और सब का जिके फतेह बुलाइए। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा तू करता।

आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्रीयस तो जुजू करियो रक्षा। राख ले

सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह धर सब हूं। जेते वदन श्रेष्ठ सब तार है।

एको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हरगोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निध आवै ताए। सब थाई हुए सहाय दसम पातशाह साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज। सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता। तिना प्यारियां सचेरियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। वाहिगुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए। खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां स्वासां संग निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। वाहिगुरु पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। वाहिगुरु प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे। चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देख देख फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहिगुरु सिखां दा मरणीमा मत उची मत पत दा राखा। वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ ते सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण नितानियां दे तान न्योटियां दी ओट न्यासरियां दा आसरा साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जी के हजूर अरदास है जी। सवेर तों सजे हुए दीवान अंदर आप जी दी अमृतमई बाणी दा कीर्तन कथा विचार ढाडी वारा गायन होईआं ने। सोदर रहिरा साहिब जी दा पाठ होया है। बाणी पढ़दिआं कथा कीर्तन विचारां ढाडी वारा गायन करदिआं होईआं बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां दी मुआफ़ी बख्शो। अगे तो सुमत बख्शो। समूह संगत दे हिरदिआं उपर पढ़ी सुनी बाणी कथा कीर्तन दा भाव वसाओ। कृपा करो समूह वक्ता जनां नूं इसे तरह अपनी सिफत सलाह करन दा बल बुद्धि उद्यम चाओ बख्शिश करो। कृपा करो पातशाह दाराई संगत दीआं हाजरियां भेटावां दर प्रवान करनियां शुभ मनोकामनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां। समूह परिवारां अंदर सुख शांति आपसी प्यार इतफाक तंदुरुस्तियां चढ़दी कला दी दात बख्शनी। बच्चियां नूं दीर्घायु गुरसिखी जीवन उच्च विद्या दा दात। कृपा करके पातशाह माता पिता अते वडेरियां दी आग्या पालन दी समत बख्शिश करनी। कारोबारां विच बरकतां पाउणियां किरत कमाईआं विच वाधे करने। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिआ तेरा नाम चिताए नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आ गया भई अकाल की तभी चलायो। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की। जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में।

मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। सो कहो टल गुर सेवी है एहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है, तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।